ओ रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला चुना दे। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ड्यूएट फ्रॉम मूवी मिस मेरी 1957। द नेक्स्ट वन ऑल्सो इज मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर ड्यूएट। बाय द वे, हेमंत कुमार स्कोर द म्यूजिक, एज अ सेड, राजन कृष्ण रोड द लिरिक्स, एंड दिस वन इज ए डिवोशनल बेंट काइंड ऑफ सॉन्ग। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। दिस सॉन्ग पिक्चर इन जमुनी गणेशन ऑन अ पियानो सिंगिंग एंड जमुना सिंगिंग अलॉन्ग एंड डांसिंग। जगदीश सेठी, अशला ससदेव, किशोर कुमार, मारुति आर ऑडियंस। मीना कुमारी इज जेलसली अपसेट एंड वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, हियर इट इज।

0: सच्चे, कितने नेक ख्याल है, क्या नसीहत है, क्या शिक्षा है।
1: तुम्हें भी पसंद आई?
0: क्यों नहीं, अच्छी बात सबके लिए अच्छी होती है। इजाजत हो तो मैं भी इसे थोड़ी सी नसीहत कर दूं।
1: शौक से?

बीपी के घर आज दुल्हनिया चली, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी. एक्चुअली राजकुमार's मदर बोरोज़ ए बंच ऑफ मनी फ्रॉम ए मनी लेंडर इन द विलेज, ए कनिंग मनी लेंडर प्लेड बाय कन्हैयालाल चतुर्वेदी, टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग एंड मॉर्गेजेस द लैंड दे ओन एज अ कोलैटरल. द सेकेंड सॉन्ग ऑफ द मूवी इज मतवाला जिया डोले पिया झूमे घटा छाए रे बादल, करना हो तो कर प्यार करना डर, बीती उम्र आएगी ना कल आएगी ना पागल अरे पागल. लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ड्यूएट पिक्चर है. नरगिस राजकुमार मुकरी शीला नायक एंड अदर विलेजर्स हार्वेस्टिंग ए बाउंटिफुल क्रॉप. एट द एंड ऑफ द सॉन्ग नरगिस फेंट्स एंड एवरीवन लर्न्स दैट शी इज प्रेग्नेंट. हियर द सॉन्ग.